सोम खंड ब्रह्मंडा के हम गरीब मस्ती प्रति हर राख राख बड़ बड़ा के जन नानक नाम आधार के।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप

मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदान सर्व प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अधुर दर्दं अगं ओग हरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पारं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयाल अशेदीय भेदीय नाम अशेदीय भेदीय नाम अकाम समस्त उपराजी समस्त अस्तामं तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं उजंग प्रयात छंद अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्य समस्ति निदान्य नमस्त्वं नरेनाथे नमस्त्वं परमार्थे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो सहस्राजे

भगवती संतु प्रसाद कहते कि आओ शिज दिस क्या भिज पिसे क्या गन करमे क्या बन परमे क्या भिज लोक क्या आदत सुख है कबधूत भरने के बेभूत करने के राज प्रवाह के धर्म तो जा है कि आ सुख वर्ण के सर्वा भरण के जगत कृति है कि शत्रंग क्षत्रिय कि ब्रह्म स्वरूप है कि अनुपम उपे कि आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि कह दीन है कि रोजी रजा कह नहीं मेरे वाक्य

सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्वपास्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वं पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से, गलखंड से,

सदा सचदानंद सत्रम प्रणासी करी मुल्को निंदा समस्त निवासी अजायब बेपूते गजायब गनी में हरियंग करियंग क्रीमुल रही में।

ब्रह्म हे सर्वेश्वर सची पते अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रसें पाग।

पस को मृतान को पूजन तहायो कूर क्रिया और जो सभी जग श्री भगवान को भेद ना पायो कूर क्रिया और जो सभी जग

संबंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप्तरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज, ब्रह्मा जूथी ओ जमन काल, सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जनी आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिशानत चीटी ते कुंचरे सथूला।

जाबे उद कर करा करतारा प्रजा तरतब दे अपारा जबे अकर करत हो कब हूं तुम मैं मृत दे तर सब हूं देते बादना श्रेष्ठ सब तारा आप अपनी बूझ उचार है।

सोइया पाए गहे जबते तुमरे तबते को माकतरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो।

दिव्य दृष्ट होई श्रवण हो मेरे हो। साचे सुनने नू पठाए, साचे सुनने नू पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, सचल खवेड़ाणी ताकी गत कहीं ना जाए,

साहिब जीओ दंडौत वंदना अनेक बार सर्व कला समर्थ दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे दया करो किछ

जतन बहुत मैं कर रहे हो मिट्यू न मन को मान, दुर्मत से नानक फदे हो राख ले हो भगवान।

सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।